बरडी डोंग उरुम चे हायू गर मुबती वाजिब सुनत उरुम परलू लगर बरसारिंग कातावान लागू हेरिंगी मुससल तू लागू कने पत्नी सीबी